0: तपाईँ सुन्दै हुनुहुन्छ रेडियो ढोर बाराही 103.8 मेगाहर्ज।
1: स्टुडियो टाइम अहिले दिउँसोको 1 बज्यो।
2: टाइम चेक को साथ में बनकेवा कालिका सुन चाँदी पसल दुलेगौड़ा हेल्पो चोक अपने भवन में छापा वाला सुन का आधुनिक डिजाइन का तैयारी कर गहना राशि अनुसार का पत्थर पाइन अर्डर अनुसार का गहना तैयार गर्नु को साथ ही पुरानो गर गहना नया गहना संग साठफेर पनि गरिन्छ। प्रोपाइटर बाजुराम सुनार विनोद सुनार मोबाइल 98160-95301।
3: Cameras stand by. Reload music.
4: नेपाली चलचित्रका गीत संगीतहरू

0: 你到今儿晚上你晚上能不能放上来我说清楚了吗？
1: 行了，拜拜。
2: Excuse me. सुनो ना, मैं तेरे आगे चुक समान छोड़ दिन हूँ सर। मेरे मोबाइल में नेटवर्क ही टीपी राखो सही ना बने।
3: भाई अलसे।
2: Thank you so much. Thank you. So sorry, मेरे फ़ोन से आऊँ बॉय सर। So sorry ला and thank you so much. Thank you so much. Thank you so much. मैं सोच चुका बंदे इनका प्यार आऊँ सर बने।

0: विगत 15 वर्षदेखि उत्कृष्ट डिजाइन र सुनको शुद्धतामा ग्राहकको मन जित्न सफल
1: ओम प्रोसर आभूषण सुनचाँदी पसल दुलेकौडा फिची बजार
2: आकर्षक तथा आधुनिक डिजाइनको गर गहना विवाहका सेटकै गहना खरिद बिक्री तथा साटफेर गर्नु परेमा हामीलाई सम्झनुहोस् वर्षौंदेखि विश्वासित आएको ओम प्रोसर आभूषण सुनचाँदी पसल शुक्ला गण्डकी 4 दुलेकौडा भित्री बजार प्रोपाइटर भोज बहादुर सुनार
3: मोबाइल 98058537 र 98066159
0: पद्मश्री हस्पिटल एन्ड अलाइड साइन्सेस न्युरोड पोखरामा अब सबै प्रकारका उपचार सेवा सम्भव छ
3: बाल रोग विशेषज्ञ डाक्टर विनोद तुनाचन प्राध्यापक डाक्टर वन्दना श्रेष्ठ
0: प्रसूति तथा स्त्री रोग विशेषज्ञ प्राध्यापक डाक्टर डेला सिंह जोशी डाक्टर चुम्माया पुन
3: फिजिसियन तथा पेट कलेजो रोग विशेषज्ञ डाक्टर विकास अधिकारी डाक्टर शंकर बराल
0: हाड जोड्ने तथा नसा रोग विशेषज्ञ डाक्टर यज्ञमान साक्य उप प्राध्यापक डाक्टर पविन थापा र हाड जोड्ने नसा रोग विशेषज्ञ तथा आर्थोस्कोपी सर्जन उप प्राध्यापक डाक्टर सुभाष गुरुङ
3: मोटर रोग विशेषज्ञ डाक्टर तेज बहादुर गुरुङ क्यान्सर रोग विशेषज्ञ डाक्टर ऋषि सेचन
0: युरोलोजिस्ट तथा मिलगौला प्रत्यारोपण सर्जन सह प्राध्यापक डाक्टर प्रकाश छेत्री डाक्टर जुजुराज श्रेष्ठ
3: नाक कान घाटी तथा थाइरोइड सर्जन सह प्राध्यापक डाक्टर विकास गुरुङ छाला विज्ञान भेनेरोलोजी र कुष्ठ रोग विशेषज्ञ डाक्टर अस्मिता वाग्ले
0: रेडियोलोजिस्ट प्राध्यापक डाक्टर मनिष किरण श्रेष्ठ डाक्टर सुमिरन श्रेष्ठ
3: एन्टेरियोलोजिस्ट डाक्टर भूपेन्द्र कुमार तुलाचन प्लास्टिक एन्ड कस्मेटिक सर्जन उप प्राध्यापक डाक्टर पियुष गिरी
0: एनेस्थेसियोलोजिस्ट उप प्राध्यापक डाक्टर साल गुरुङ डाक्टर सुस्मिता गुरुङ
3: जनरल सर्जन प्राध्यापक डाक्टर नरेन्द्र विक्रम गुरुङ सह प्राध्यापक डाक्टर देवेन्द्र श्रेष्ठ
0: फिजिसियन डाक्टर अनमोल पौडेल र मनोचिकित्सक डाक्टर मानकाजी थापा मगर
4: वार्ड आईसीयू एनआईसीयू जनरल एन्ड ल्याप्रोस्कोपी सर्जरी सेवा पोस्ट अप सेवा फिजियोथेरापी इन्डोस्कोपी क्लोनोस्कोपी इको टीएमटी हल्चर पीएफटी युरोफ्लोमेट्री डायलिसिस सेवा र 24 घण्टा इमर्जेन्सी सेवा साथै अन्य विशेषज्ञ डाक्टरहरूद्वारा सेवा प्रदान गरिएको जानकारी गराउँदछौ
5: 24 घण्टा प्याथोलोजी सेवा उपलब्ध छ विस्तृत जानकारीको लागि पद्मश्री हस्पिटल एन्ड एलाइड साइन्सेस प्राली पोखरा 9 फोन 061-590-162 590-163
6: 103.8 अन्तर्मनको आवाज

यता सुन्नु ए हाम्रो सावरले पला बेला पोछा पनि लाउँछु भन्नुभयो ए सबले सुन्यौ के भनम अरू सदा बहार दाई।